अपना न्यूज ऑन एआईआर एबिका द्यु आकाशवाणी करगिलिन दिरिंग फ्रोचुक पर पी प्रोग्राम उन्न यंबो नचा यंती दुनु खलेबसेत नचे जुना सलाम पोको बल सौंशिक

0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन चंद ही लम्हे बाद अब हम
1: संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सारण में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने

कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: her andı. घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गूगल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: बिल्कुल। और मंजुला, शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत से विचार के साथ। कहते हैं कि जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता वो नहीं होता जो किसी और से जुड़ता है,
0: क्या बात,
1: बल्कि वो होता है जो इंसान का अपने आप से बनता है। क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाते हैं तब आपका आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है।
0: क्या बात है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल, आपका सबसे सच्चा दोस्त कौन है, साथी कौन है, वो जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है या फिर वो जो हर सुबह आईने में आपको देखता है। आप अपना जवाब हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है FM गोल्ड GA@gmail.com। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का सफर।

0: थे आया सावन झूम के फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: और दोस्तों, 4 जुलाई का दिन इतिहास, समाज, संस्कृति के कई प्रेरणादायक पड़ावों की याद दिलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे किसान हो, महिला स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियां हो या छोटे व्यापारी, सहकारिता ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
0: इसके अलावा आज एक और खास दिन है मंजुला। आज भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और देश के सादगीपूर्ण नेताओं में गिने जाने वाले गुलजारीलाल नंदा जी की जयंती है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और ईमानदार राजनीति को हमेशा प्राथमिकता दी।
1: और आज ही भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार अभिनेत्रियों में शुमार नसीम बानो जी की जयंती भी है। उन्हें अपने दौर की ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की माता थीं। पुकार, चल चल रे नौजवान और अनोखी अदा जैसी फिल्मों में उनके प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया।
0: इसके साथ ही 4 जुलाई यानी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि, उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्र प्रेम और मानव सेवा की भावना जगाई।
1: और आज महान गीतकार भरत व्यास जी की पुण्यतिथि भी है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ज्योति कलश छलके और आधा है चंद्रमा रात आदि जैसी अमर गीतों के रचनाकार भरत व्यास ने अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों को शब्दों में अमर कर दिया। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये गीत, गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता और रफी की आवाज में।

0: अभी हमने एक सवाल किया था कि आपका सबसे सच्चा साथी कौन है, तो जवाब आने शुरू हो गए हैं कल्पना, तो हम शुरू करते हैं। संदीप राय जी लिखते हैं कि मेरा बड़ा भाई मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्या बात है, वो हमेशा मेरी मदद करता है, सही मार्गदर्शन करता है।
1: और पूरन सिंह जी यादव लिखते हैं कि सब साथ छोड़ दें लेकिन रेडियो हमेशा साथ निभाता है, यानी इनका सबसे अच्छा साथी है रेडियो।
0: और नवीन भाटिया जी लिखते हैं कि मेरे फादर साहब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं।
1: और महेश अग्रवाल जी ने भी लिखा है कि भाई एफएम गोल्ड उनका सबसे अच्छा साथी है।
0: और अमिताभ रथ जी ने तो बहुत ही लंबा सा एक मेल भेजा है, लेकिन उसका सारांश ये है कि उनकी वाइफ उनकी सबसे अच्छी मित्र है।
1: बिल्कुल, और देखिए आज हमारे जो श्रोता हैं वो सब यही कह रहे हैं कि भाई आकाशवाणी ही उनका सबसे अच्छा दोस्त है, एफएम ही, तो ये चरणदास जी भी यही लिख रहे हैं, मंजुला क्या बात है।
0: हाँ, और आदित्य मुद्गल जी लिखते हैं कि मेरी माँ, बस उन्होंने इतना ही लिखा है, और वैसे भी कल्पना कहते भी हैं कि माँ में तो पूरी दुनिया होती है।
1: बिल्कुल, और राधा शुक्ला जी ने हमें ईमेल किया है और उन्होंने लिखा है कि हमारा जो सच्चा साथी है वो अपना स्वास्थ्य होता है, तो हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
0: बिल्कुल सही, तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आज की धरती जो होती है, आज की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की नहीं होती है बल्कि उस सोच की जो कहती है कि धरती को बचाना है, तो अपनी थाली से शुरुआत कीजिए। तो मिलिए निष्ठा चौहान से, एक ऐसी युवा इंजीनियर जिन्होंने एरोस्पेस जैसी शानदार नौकरी छोड़ दी। लोग समझ रहे थे कि ये करियर का सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन निष्ठा को दिख रहा था भारत का भविष्य।
1: बिल्कुल, और उन्होंने अहमदाबाद में शुरू किया गुजरात का पहला जीरो वेस्ट मिलेट कैफे, जिसका नाम कैफे आरंभ रखा। पर यहाँ सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता मंजुला, पता बल्कि एक सोच परोसी जाती है। यहाँ प्लास्टिक नहीं, स्टील के स्ट्रॉ हैं, टिश्यू पेपर नहीं, रीयूज होने वाले तौलिए हैं।
0: बिल्कुल, और डिस्पोजेबल प्लेटें नहीं है, केले और अरेका के पत्तों की प्लेटें हैं। बचा हुआ खाना कूड़ेदान में नहीं, कंपोस्ट बनकर फिर से मिट्टी में लौट जाता है। और सबसे खास बात,

0: जिस मिलेट को कभी सिंपल अनाज कहा जाता था उसी से आज रागी डोसा, मिलेट मोमोज, बाजरे की भेल, रागी बन वाला वड़ा पाव जैसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो रहे हैं।
1: क्या बात है, यानी भारत का पारंपरिक खाना आधुनिक अंदाज में, और कैफे को ठंडा रखने के लिए पता है इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम भी अपनाया गया है। और यही नहीं, आरंभ बच्चों को टिकाऊ खान पान यानी कि शुद्ध भोजन की सीख भी देता है ताकि पर्यावरण की चिंता बचपन से ही उनकी आदत बन जाए।
0: हाँ, और इन छोटी छोटी पहलुओं का असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये कैफे हर साल लगभग 47 जो टन कचरा कम करने में योगदान दे रहा है। निशा मानती है कि हेल्दी बनने के लिए एवोकाडो या इम्पोर्टेड सुपर फूड जरूरी नहीं है, हमारे अपने बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो ही सुपर फूड है।
1: और उनका ये कैफे हर महीने लाखों रुपए का कारोबार कर रहा है, लेकिन असली कमाई सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हर साल टनों कचरा कम करना, स्थानीय किसानों का समर्थन करना और बच्चों को सिखाना कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब आप किसी कैफे में जाएं, एक पल रुककर सोचिए, क्या हम सिर्फ स्वाद चुन रहे हैं या अपने आने वाले कल का भविष्य भी, क्योंकि सच्चा विकास वही है जो धरती को भी संवारे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना अनाड़ी फिल्म से।
1: बिल्कुल, और मंजुला बात करेंगे महिलाओं की एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, क्योंकि अब भारत की बेटियां सेना के उन पदों तक पहुंच गई हैं जहां सिर्फ पुरुष रहा करते हैं, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे हम एनडीए के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षित पहले महिला कैडेट्स के बैच को भारत के सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है।

0: त्यौहार है जो बदलते भारत की नई तस्वीर इस तरह की बेटियों ने सजाई है। और 25 जून 2026 को एनडीए ने पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियों को सीधे अधिकारी के रूप में प्रवेश दिया है। और इस बैच में 17 महिला कैडेट्स थीं, जिनमें से 9 भारतीय सेना में अधिकारी बनी, 5 भारतीय वायुसेना अधिकारी बनी और 3 भारतीय नौसेना के उच्च पदों तक पहुंची हैं।
1: क्या बात है। और ये उपलब्धि हम इसलिए भी साझा कर रहे हैं मंजुला, क्योंकि एनडीए में महिलाओं के लिए समान अवसर का अध्याय शुरू हुआ है। ये सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा कदम है।
0: और ये भारत के सैन्य इतिहास की बदलती हुई तस्वीर है, जहां अब बेटियों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। अब उनके पास भी उड़ने के लिए बराबर आसमान है।

0: बड़े खूबसूरत से गीत आज सुन रहे थे खामोशी फिल्म से, जिसे गाया कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने।
1: और ईमेल हमारे पास आने फिर से शुरू हो गए, और आज का जो सवाल है हमारा कि आपका सच्चा साथी कौन है, इस पे आपको रिप्लाई करना है। हमारा ईमेल आईडी fmgolgie@gmail.com। तो सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने कि हमारा सच्चा और हर पल साथ देने वाला साथी है हमारा अपना आत्मविश्वास।
0: बिल्कुल। और कृष्ण कुमार गुप्ता लिखते हैं कि भाई हमारा जो सच्चा साथी है वो वही है जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहता है।
1: और निदा बानो लिखती हैं कि मेरा सच्चा साथी उम्मीद है।
0: बिल्कुल। और ऋचा अवस्थी लिखती हैं कि कहते हैं कि सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर सुख दुख में साथ दे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी साथी मेरी बहनें हैं तो हम उनसे सारी बातें करते हैं।
1: और रश्मि गुरुग्राम से लिखती हैं कि जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे सच्चा साथी वो होता है जो हर हाल में आपका साथ न छोड़े। और मेरे लिए वो ईश्वर है जो हर खुशी हर मुश्किल में मेरा सहारा बनते हैं, और अगर दुनिया की बात करूं तो मेरा अपना विवेक और परिवार ही मेरे सबसे बड़े साथी हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही अनिल मेहता जी लिखते हैं, देखो महिलाएं भी बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ इनकी सबसे अच्छी दोस्त है मंजुला।
1: क्या बात है, कहीं साथ तो नहीं बैठी हुई है
0: शायद इसीलिए।
1: हाँ, और गौरी शंकर जी लिखते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम
0: राम राम।
1: दोस्त मुसीबत में काम भी आते हैं, सभी नहीं लेकिन हमें उन दोस्तों को भूलना नहीं चाहिए। मेरी तो बहनें ही लाखों में एक है, क्या बात है, जिन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया।
0: बिल्कुल। तो हमारे अन्य श्रोता भी हमें ऐसे ही ईमेल करते रहे, और आपके लिए ये प्यारा सा गीत।
2: तुम्हें
0: हाँ
2: क्या चुप रहूं
0: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: आप सुन रहे थे दीवार फिल्म से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: और दोस्तों एक छोटा सा सवाल, आखिरी बार अपने मर्जी से कोई किताब कब पढ़ी थी और आखिरी बार आपने अपने मन की बात कागज पर कब लिखी थी? आज की भाग दौड़ में हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं लेकिन 5 पन्ने पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, जबकि सच तो ये है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसे लोग महसूस करें तो सिर्फ 2 आदतें अपनाइए, पढ़ना और लिखना।
0: बिल्कुल, देखो मंजुला, पढ़ना हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि ज्ञान देता है। ये हमारी सोच को गहराई देता है, हमारी कल्पना शक्ति को उड़ान देता है और शब्दों का खजाना भी बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, हमें एक अच्छा बातचीत करने वाला इंसान बनाता है, तभी तो हम अपने श्रोताओं से भी बात कर पाते हैं। अलग अलग विषयों की जानकारी होने के कारण हम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, हमारी बातचीत प्रभावशाली बनती है, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं और हमारा व्यक्तित्व अपने आप ही आकर्षक बनने लगता है।
1: क्या बात है। अब बात करते हैं लिखने की। लिखना सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने विचारों को आकार देना है। जब आप लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोच स्पष्ट होती है और खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता कई गुना बेहतर हो जाती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर एन फ्रैंक की डायरी दुनिया तक ना पहुंची होती तो शायद इतिहास का वो दर्द, वो भावनाएं, उस दौर की सच्चाइयां हम कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। एक छोटी सी लड़की की लिखी हुई डायरी आज पूरी दुनिया के लिए इतिहास का जीवंत दस्तावेज है।
0: तो कौन जानता है, आज जो आप अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी सीख, वही आने वाले समय में किसी बच्चे को प्रेरणा दे जाए, किसी शोध का आधार बन जाए, या फिर पूरे समाज को नई दिशा दिखा जाए, है ना मंजुला? तो याद रखिए, जो पढ़ता है वो दुनिया को समझता है और जो लिखता है वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़िए और 10 मिनट लिखिए, चाहे किताब हो, अखबार हो, कविता हो, डायरी हो या अपने दिन का एक छोटा सा अनुभव। यकीन मानिए, कुछ महीने बाद लोग कहेंगे आप में कुछ अलग बात है, क्योंकि अच्छी किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे व्यक्तित्व गढ़ती हैं और अच्छी लेखनी सिर्फ शब्द नहीं लिखती, वो विरासत छोड़ जाती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म थी तीन देवियां।
1: क्या कहने मंजुला जी। और देखो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है। यानी आज की जो जिंदगी है वो जरूर व्यस्त हो रही है, लेकिन हर इंसान एक अकेलेपन से जूझ रहा है, और उसमें भी सबसे आगे है युवा। वो युवा जो हमें हमेशा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से कनेक्ट नजर आते हैं, वास्तव में भी सबसे ज्यादा अकेले हैं। क्यों?
0: सही कहा। पहले लोगों के पास नेटवर्क भले कम था लेकिन डीप कनेक्शंस थे। आज सोशल मीडिया पर भले ही 2 मिलियन फॉलोवर हैं, लेकिन ऐसे दो लोग मिलने मुश्किल हो जाते हैं जिन्हें हम मुश्किल की घड़ी में फोन कर सकें।
1: और इससे यही समझ आता है कि आज लोग अकेले इसलिए नहीं है कि उनके पास लोग नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑडियंस तो है पर कनेक्शन नहीं है।
0: तुम्हारा कहने का मतलब दिल से दिल का जुड़ाव। तो इसलिए जरूरी है कि खुश रहने के लिए इस अकेलेपन से बाहर रहें, इसके लिए रिश्तों को समय दें, कुछ नया सीखें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें, मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें, योगा करें, ध्यान करें।
1: साथ ही जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी चाहिए कि वे युवा मन को समझें, उन्हें सुने, तुलना न करें, उपलब्धियों को सराहें, सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दें। फिर इन अकेले पड़ते अपनों का मन राहत महसूस करेगा और वे खुश रहना सीख जाएंगे बजाय अकेले रहने के।

0: सुने खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे कालिया सिंह से, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। और मंजुला क्या कह रही थी आप?
1: मैं ये कह रही थी कि जब भी घूमने की बात होती है तो ज्यादातर लोग सीधे बड़े शहरों, मशहूर हिल स्टेशन या फिर बीच डेस्टिनेशन का नाम लेते हैं, लेकिन एक सवाल है कि क्या आपने कभी उस भारत को देखा है जहां सुबह पक्षियों की आवाज से होती है, जहां हर घर की रसोई में पीढ़ियों पुराने स्वाद पकते हैं और जहां परंपराएं सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जी जाती है।
0: मगर नहीं देखा है तो आपकी ट्रेवल लिस्ट में भारत के गांव जरूर होने चाहिए, क्योंकि असली पर्यटन सिर्फ तस्वीरें लेने का नाम नहीं बल्कि किसी जगह की संस्कृति, खान पान, लोक कला, भाषा और लोगों को महसूस करने का नाम है। क्यों मंजुला? गांव आपको वो अनुभव देते हैं जो कोई भी पास सितारा होटल आपको नहीं दे सकता।
1: हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश जाएं तो सिर्फ शिमला या मनाली ही नहीं बल्कि किन्नौर का खूबसूरत कल्पा, बर्फीले रेगिस्तान वाला स्पीति भी देखिए। वहाँ के शांत मठ, सेब के बाग और पहाड़ी जीवन आपको प्रकृति से जोड़ देगा।
0: और इसके साथ ही लद्दाख का लामायुरु गांव, जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है, यहाँ का अनोखा चंद्रमा जैसे धरती का नजारा और सदियों पुराना बौद्ध मठ किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराते हैं।
1: तो मेघालय का मावली नांग, जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, नागालैंड का खोनोमा, जो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन विलेज है, तो यहाँ के साधारण से घर, मिट्टी के चूल्हे पे बनी एक रोटी, किसी बुजुर्ग की बनाई लोक कथा आपकी पूरी यात्रा को खूबसूरत बना सकता है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता जी और आशा जी को फिल्म प्रोफेसर से, ये खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल मंजुला, और देखो हमारे एक साथी, इन्होंने एक बहुत ही अनोखा सा मैसेज किया है। इन्होंने लिखा है आशीष गिरी जी कि मेरा सच्चा साथी मेरा मोबाइल है, जो मेरे मूड से चलता है, जब चाहे ऑन जब चाहे ऑफ।
0: और राधा पाठक जी लिखती है कि हमारा सच्चा साथी हमारा ज्ञान है, जो हमें हमेशा सही राह पर ले जाता है।
1: बिल्कुल। और नवीन कुमार लिखते हैं कि पत्नी है जीवन की मधुर मुस्कान, उसमें ही महकता है हर अरमान, सुख दुख में जो थामे हर पल हाथ, यही होती है जीवन की सच्ची साथी।

0: मनोज संगीत आप सुन रहे हो जाला फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।
1: और इसी के साथ आज की हसीन सफर को देते हैं यही विराम। फिर मिलेंगे किसी दिन इसी समय पर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए मंजुला
0: और कल्पना को अनुमति।
1: नमस्कार।

व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमरीका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को एक

श्रुता, सन 1992 में रिलीज हुई ये फिल्म एक प्रेम कहानी है जिसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान मुख्य भूमिकाओं में थे। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म एक प्यार, त्याग और फिर से जीने की उम्मीद की कहानी है। यह फिल्म दिव्या भारती, जो कि काजल के रोल में है, इनके इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति रवि यानी ऋषि कपूर की मृत्यु के बाद राजा यानी शाहरुख खान से प्रेम करती हैं। हालांकि रवि के जिंदा होने और फिर से काजल की जिंदगी में आने से सब कुछ बदल जाता है।

0: आगे भी करेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी फिल्म है दीवाना। और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी हुई हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। श्रोताओ, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शाहरुख खान की भूमिका के लिए सनी देओल पहली पसंद थे। जब सनी देओल ने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया तो फिर शाहरुख खान को कास्ट किया गया। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म से पहले ही दिल आशना है के लिए साइन कर लिया था। ये फिल्म थोड़ी देरी से रिलीज हुई और संयोग से दोनों ही फिल्मों में उनकी जोड़ी दिव्या भारती के साथ ही थी।

बड़ी ही रोचक बात यह है कि ऋषि कपूर को पहली बार इस फिल्म का एक गीत है ऐसी दीवानगी गाना सुनने पर इस गीत से प्यार हो गया था। वह लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि यह गाना उन पर फिल्माया जाए, लेकिन फाइनली इस गाने को शाहरुख खान के लिए ही फिल्माया गया। ये भी बताना चाहूंगी कि इस गीत की धुन एक फेमस कन्नड़ गाने पर आधारित है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म के इसी गीत को अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाजों में।

फिल्म में बोल राधा बोल से बहुत कुछ मिलता जुलता है जो उसी साल रिलीज हुई थी। दोनों में ऋषि कपूर हैं और दोनों में ही उनकी माँ का किरदार सुषमा सेठ ने निभाया था। दोनों फिल्मों में अन्य कलाकार जो दिखाई दिए हैं उनमें आलोक नाथ और मोहनीश बहल शामिल हैं। दोनों फिल्मों में बहल ने नायक के परिवार की एक भरोसेमंद कर्मचारी के दुष्ट बेटे की भूमिका निभाई है। साथ ही दोनों फिल्मों में जब मोहनीश बहल के बुरे काम पकड़े जाते हैं तो उसका पिता उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। साथ ही दोनों फिल्मों में एक किरदार को मरा हुआ मान लिया जाता है लेकिन अंत में वह जीवित और स्वस्थ दिखाई देते हैं। खैर ये तो रही दोनों फिल्मों की सिमिलैरिटीज, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

श्रोता कार्यक्रम के बीच में बहुत सारे संदेश हमें आ रहे हैं। जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं गुजरात अजीत भास्कर का, और जो अगला संदेश है वो है यसीन अनजान का झारखंड से। गुरमीत सिंह हमें लिख के भेज रहे हैं शालीमार बाग से। पूनम गजनेजा जी हमें संदेश भेज रही हैं, साथ ही सुधाकर यादव, और इनके साथ हैं प्रशांत राज कुमार, संचित दयाल कुमार, प्रथमेश देशमुख और इनके अन्य साथी जो हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है नरेंद्र जी का और राधे श्याम देवगन हमें लिखकर भेज रहे हैं इंदिरा नगर भवरपुर से। कमलकांत गुप्ता जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। सतीश अनेजा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही अगला संदेश है वो हरजिंदर शिंदा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं पंजाब से। आर कुमार हमें लिखकर भेजा है और इनके साथ हैं मिंटू थॉमस पंजाब से। धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, कपिल चीपा और पूजा परिहार जी हैं, फागुराम यादव हैं, मुकेश भट्टा जी हैं, पीएस नावकर भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। साथ ही जो अगला संदेश है वो रामचरण विश्वकर्मा जी का है और बसना से हमें लिखकर भेज रहे हैं राधे श्याम जी। राजकुमार डूडी हमें लिखकर भेज रहे हैं, रोजी डिकास्ट्रा भी हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके अन्य साथी हैं संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं, सुदर्शन मुखी शांति नगर सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं।

भेज रहे हैं कि उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है और बहुत ही जानकारियां प्राप्त हो रही है। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारे सभी लिसनर्स के जीवन बहुत ही सुखद हो। फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं, संदीप मक्कर हमें संदेश भेज रहे हैं, साथ ही जो अगला संदेश है वो है दिग्दर्शन गौर जी का। सुरेश जादव हमें लिखकर भेज रहे हैं, अहमद फूल वाले हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ हैं इनके अन्य साथी। संदीप मक्कर जी का संदेश आ रहा है, हीरा मणि वर्मा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है वो है इशक मोहम्मद का।

दोस्तों ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उस साल दूसरी सबसे हिट फिल्म बनी। बेटा फिल्म के बाद इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की। यही नहीं, इस फिल्म का संगीत भी उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत था, जिसमें 7 से 8 मिलियन यूनिट बेची गई थी। आपको ये बता दें कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट डेब्यू के लिए, दिव्या भारती को वर्ष का लक्स न्यू फेस के लिए, नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, समीर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए, कुमार सानू को गाने सोचेंगे तुम्हें प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो ये था हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और अब मैं दीक्षा आपसे अनुमति देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं, जाते जाते सुनते हैं इस फिल्म का ये अंतिम गीत।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 1:40 होने वाले हैं अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे से 480 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी नवी टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान आधारित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम बारे एक्ट यूआपा तहत दहशतगर्द ऐलानिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रगट किया कि अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाला समुचा हाई स्पीड रेल कोरीडोर 2029 के अखीर तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत और इसराइल विचकार दुवला निवेश समझौता BIA आज तो लागू हो गया है। भारत इंग्लैंड विचकार

0: मैनचेस्टर विच खेलिया जाएगा। खबरां विस्थार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे से नवी टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत नाल बनी इमारत सालाना 20 लाख मुसाफरां की आवाजाही लई तैयार की गई है। आधुनिक सहूलतों नाल लैस नवी टर्मिनल इमारत मुसाफरां लई एक सुचारू और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। इस नाल इलाके विच सैर सपाटे कारोबार और रोजगार को उत्साह मिलेगा। श्री मोदी ने सोधी हुई उड़ान योजना भी शुरू की जो खेतरी संपर्क और हवाबाजी खेत्र को हुलारा देगी। देश के सिविल हवाबाजी खेत्र विच इस अहम पहलकदमी नाल उड़े देश का आम नागरिक स्कीम नूं होर बल मिलेगा। 28,840 करोड़ रुपए की वंड नाल इस योजना का उद्देश अगले 10 साल विच हवाबाजी अगवाई वाले विकास के अगले पड़ाव नूं गति प्रदान करना है। अज शामी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात लई रवाना होणगे जिथे उस सानंद विच सीजी सैमी आउटसोर्सड सैमी कंडक्टर असैम्बली ते टैसट सहूलत का उद्घाटन करनगे। यह भारत के सैमी कंडक्टर निर्माण खेत्र विच महत्वपूर्ण मील पत्थर है। यह प्रोजैक्ट इंडिया सैमी कंडक्टर मिशन तहत प्रवानित पहले 4 विचों एक है। इस 7,500 करोड़ रुपए तो वध दे कुल निवेश नाल विकसित किया गया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान अदालत से व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां की रोकथाम बारे एक्ट युआपा तहत दहशतगर्द ऐलानिया है। यह व्यक्ति जैश ए मुहम्मद लश्करे तैयबा और होर धड़ों नाल जुड़े हुए सन। जम्मू कश्मीर विच घुसपैठ भर्ती हथियारों की सप्लाई और हमलों की योजना बनाने समेत वख-वख गतिविधियों में शामिल होने लिए उन्हें दहशतगर्द ऐलानिया गया है। इस नाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA वर्गियां जांच एजेंसियां इन दहशतगर्दों की फंडिंग हथियारों की विक्री से पाबंदी लाने और उन्हों जायदादों कुरक करने का अधिकार मिल जाएगा। युआपा एक्ट विच सोध केंद्र सरकार नूं संगठनां दे नाल नाल व्यक्तियां नूं दहशतगर्द ऐलानण दा अधिकार दिंदी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रगट किया है कि अहमदाबाद और मुंबई नूं जोड़न वाला समुचा हाई स्पीड रेल कोरीडोर 2029 के अखीर तक पूरा हो जाएगा। गुजरात विच चल रहे वख-वख रेल प्रोजेक्टां दी समीक्षा करन तों बाद अहमदाबाद विच मीडिया नाल गलबात करदिआं मंत्री ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी नाल अगे वध रहा है। गुजरात सैक्शन विच 80% काम पहला ही पूरा हो चुका है। उन्हां अगे कहा कि तेज रफ्तार रेल नैटवर्क नूं पड़ावार ढंग नाल विकसित किया जा रहा है।
1: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: मंत्री ने अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन वाली थां ते इंजीनियरां अते निर्माण टीमां नाल गलबात भी कीती। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने अज वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया तहत गिणती फार्म जमा करवाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उपराष्ट्रपति ने दस्सिया कि दिल्ली दे मुख चोण अधिकारी जिला चोण अधिकारियां वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियां अते BLO ने उपराष्ट्रपति भवन विखे SIR अधीन चल रही गणना प्रक्रिया विच सहायता प्रदान कीती। श्री राधा कृष्णन ने सारे योग वोटरां नूं इस प्रक्रिया विच सरगर्मी नाल हिस्सा लैण दी अपील कीती। खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। भारत अते इजराइल विचकार दवला निवेश समझौता BIA अज तों लागू हो गया है। इस समझौते ते पिछले सितंबर विच नवी दिल्ली विच दस्तखत कीते गए सन। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समझौता दवले आर्थिक संबंधा नूं मजबूत करन अते एक सुरक्षित निवेश वातावरण नूं यकीनी बनाउण वल महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि BIA नाल सरहद पार निवेश गतिविधियां नूं हुलारा मिलन अते भारत अते इजराइल विचकार आर्थिक भाईवाली दे होर मजबूत होण दी उम्मीद है। ईरान के सबक सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनई नूं सपुरदे खाक करन लई 6 दिना सरकारी समारोह दीआं तैयारियां चल रहीआं ने। इस समागम लई व्यापक सुरक्षा ते आवाजाई प्रबंध कीते गए ने जिस विच लखां लोकां दे शामिल होण दी संभावना है। भारत की नुमाइंदगी बिहार के राज्यपाल लैफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन अते विदेश राज मंत्री पवित्र मारगरेटा ने की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मारगरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार अते भारत के लोगों तरफों श्रद्धांजलि भेंट की है। ईरान के मरहूम सर्वोच्च आगू नूं सपुरदे खाक करन नाल संबंधित प्रोग्राम अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगे। इस महीने की 9 तरीक नूं पवित्र शहर

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है।

एमडी ने कहा है कि अगले चार रोज के दौरान जुनून मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पचपेदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मोदी ने बलोतरा में खिताब करते हुए कहा कि

0: क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
1: इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नगर की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्व किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीत देने की गरज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनांत के मकाम पर सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। ये मरकज मुल्क की तकनीकी साजो सामान तैयार करने के सफर में एक अहम संगे मील साबित होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इक्तसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। UAPA की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज इंतखाबी फहरिस्त के खुसूसी नजरसानी अमल के तहत इंदिराजी फॉर्म दाखिल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर, डिस्ट्रिक्ट इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर और बूथ सतह के अफसर ने दिल्ली में जारी इंतखाबी फहरिस्त की SIR के हिस्से के तौर पर उपराष्ट्रपति भवन में इंदिराजी अमल में मदद की।
2: SIR इज अ बिग एक्सरसाइज undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate

0: and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
1: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो ओटीटी पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे. जराये के मुताबिक मजीद बताया जराये ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है. इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ्फुज़ फराहम करना है. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं. रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2019-29 तक मुकम्मल हो जाएगा. वो अहमदाबाद में नामनिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था. जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है. रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है. सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है.
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे. उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे. उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे. फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई. इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2025 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट. बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस.
1: भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे. वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है. वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है. मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले चार दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं. इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हबस और गर्मी से कुछ राहत मिली. मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा. भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था. आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया. उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया. वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है. मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है. भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है. IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा. और मर्दों की क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा. इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ.

ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।

0: रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को

0: गुजरात जाएंगे जहां वे सारंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने

0: के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा

0: से और समर्पित भाव से सुनता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। स्टूडियो की घड़ी में समय 2:30 और 16 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए पेश है आपका अपना शो एक ही कलाकार।

ना डॉक्टर एरियल गोरको खो अर्जेंटीना ने इंसुदी प्रेसिडेंट पु ड्यू इस मताल खोस मैसेज चितान ना म्यून ला 2026 सीधी जाक पुगा चुखमेल लिखो मिंजरे खोस जरन्ना की प्रेसिडेंट पु इंसु इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस रे बिदी तंजीम पु खोस जरन्ना की गता सिर्फ दी जाक पोई तोनगो ना मकसद पो दो मेन सिर्फ वार रुकाई बिया या जंग कुन रुकाई बिया मेन अम्मा दी जाक पो मकसद पो इन गा मलसेला लस बेखन म्यून जुड़ाई सो से चिक चिकी मदद बेसे चिक चिक ललाक थूत बेसे लस बेसना दे तंजीम पो ले गए आगे गोयत पी स्ट्रोल गो इंजरे दी उसी मकसद पो इन दी जाक पोई दो ना मतंग सोसाइटी ले गए ना लेखमो सोसाइटी मतंग फ्यूचर दी जाक पो वजह से का दो ना जरन नंग की मतंग आगे ओ मयत पी फ्यूचर जनरेशन कुन लसी दी तालीम पोताचा की दी जुम से थूते या लस ब्यायत पो चाम से था इंजरे मताल थोम सी गोयत की नती युल कुनीनुक नती युली मिसाल तहने याला कि दहलाता गामल से ललास बे सोना आता चिक चिक न गामित अम्मा गामा जम बेसे गत जम बेसे चा गत जसना जम सोसो गोना देलास पो शुकमुल दन मयत पे आताला ज्यादा चांसिन यो न दे फरिस न आता दि चो ख दिलास कुन मल लखोत इत्तेहाद ने इत्तेफाक ने अम्बो गोना दिउ लेगिन न छ छइन गोना खोसि जरे न आताले प्रेसिडेंट पोजरे ने हैप्पी कोऑपरेटिव इंटरनेशनल डे जरे खोस गामा ललास पे का मैसेज शितान न यो न दु अताल तखपा गुआरगोज दिक नी दि जाक पोचाम से फन खेचन इन जेर खनपो वाना इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जेरबिदी तंजीम पो जाक पो चौक पचे दुल्ला 7 जुलाई 1923 लमल खन इनसुक देल जला यूनाइटेड नेशन जेरबिदी तंजीम पो दो किंग अताल तखपा योत की दु यंग मियोल थोक का छो तंजीम चीन 193+ कंट्री खोने अम्बो गोमो जुड़ाई सोसियोत दु इस नाम रख सब खन इनसुक 1993 नुक दि जाकपो ऐलान बेखानिन सुख तेल जला 1995 नुक दि जाकपो खोनिस मल्लख्यो मयत पे शुरू बेखानिन सु सुस जसना यूनाइटेड नेशन इस 1923 नुक दि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जर्बी दि तंजीम पो मल्लख्यो सिन तेल जला 1995 नुक यूनाइटेड नेशन जर्बी दि तंजीम पो जाकपो मल्लख्यो सिन सुख गुआना दि जाकपो 7 जुलाई ला पहला चौक पो मल्लख्यो सिन सुख तेल जला यताला यहाँ पे रेजस ने की दि जाकपो सिर्फ जुलाई पहला शीशे रिजाकला चा मल लख्यो मत जसना दिरिंग 4 जुलाई ला दि जाकपो शीशे रिजाकला मल शीशे रिजाक मल लख्यो नुत गुआना सिर्फ पहला शीशे रिचा मल लख्यो मत जसना दे वखला चौक मल लख्यो वखला शीशे रिजाक इन खनिन सु 7 जुलाई गुआना दे फरिसना दि डेट पो या यो तो हम जाकपा दि जाकपो शीशे रिजाक सिन सु चा जसना शीशे रिजाक पो पहला गोमोगोय कमल लख्यो सिंसुक दे फरिस न शीशेर जाक सिंसुक पहला जुलाई शीशेर दि जाक पमल लख्यो मिंसुक दोना 2022 इनुक कोऑपरेटिव डे 100 यानी कि 100वा साली जाक पमल लख्यो खन इनसुक दिरसी जाक पोइनसुक 104 साली दि जाक पमल लख्यो न दिनसु 2026 यानी 2022 इनु दि जाक पमल लख्यो से 100 साल पूरा सोंखन इनसुक दि यूनाइटेड नेशंस जेर बि तंजीम पोविस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जेरबिती तंजीम पुने बोलाखथुत बेसे 1995 कनाखा दि जाकपुमल लख्यो सिंसु देल जला खोनिस म्यून लसित होन जुक सिंसु कि दि जाकपु तामचे छछ इंजर बयत पु यंग चोक पछसस पेरे कि नताल अस्तखपु कि गा जाक छिनता मल लख्यो न दि जाक पेनु तोनगोय न मकसद छिस अम्मा दि जाकपु तोनगो न मकसद पु चिनसु जसना पूरा म्यूली गाय म्यून ला मैसेज थोन चुकपा कि दि जाकपु तामचे छछ इंजर बयत पु खोन लपसिन थोन चुकपा दोना गा सुचिक लस्तखपा मेदना दि सोशल मीडिया स्ट्रोलिका या प्रोग्राम जाक से दि चुख रेडियो स्ट्रोलिका आकाशवाणी स्ट्रोलिका टीवी स्ट्रोलिका मोबाइल स्ट्रोलिका टेक्नोलॉजी स्ट्रोलिका म्यून थोनीमन थोन चुकचा कि दि जाक पोचाम से छा इंजर बेतपो यंग दि जाक पोई थीम पो इनसुक कोऑपरेटिव फॉर पीसफुल वर्ल्ड जरे दिलवे 2026 यानी कि मतंग थूते जोम से दुखपा चाजस न मातिपुर दुनियात पो पीसफुल गुआ यानी कि अमन शांति नु लुस्फा दूसरे दि वक नाम जेनु खास कर यो न दि जाक पो मकसद पो दो इनसुक यंग दो जेर पो पी मकसद पो दो इनकी पूरा दुनिया इनु अमन फैलाई बिया दो न सुचिक लस तखपा मेद ना यानी कि चिक चिक लस छोर चुक चा स्पेस न आता लस तखपा मेद ना आता मस ए लंग आती थोन चुक चा व्हाट्सएप स्ट्रोलिका सोशल मीडिया स्ट्रोलिका दो न खबर से थोन चुक चा चाजस न अवेयरनेस यानी कि शेस थोन चुक पो पो लेगिन अच्छा छाइन गा चीज की बारी अताल शेस मेतना दे चीज पो ब्यायत पो अताला

0: हुनर आगे बढ़े बन मन फायदा होती हर चीज़ एक से बढ़कर एक महंगा मन अंगाते दीर्घ नाते बने नुला मन 800 जेर ना आर 2000 3000 थोबत लगते चीज पुला कीमत ज्यादा ही होत दे प्यार रही हुनर पु मन दचु मामलिक मिसाम चा उदयन मेहनत बचा घात सुगा दक्षा बने चो जा टिपिक चो दैनिक चो उदयन गा सुगा सुधार बार गोचा दुख गा सुख तुब सिर थेमो छचा दुख जरे जक बजक उदयन देन प्रैक्टिस बचा बार बार चोचा ताकि दू आगे खेर न का तो यहाँ तेज दुख से कीमत ज्यादा थोप दुख दे प्या एंतेस नची सेंटर ने यो शीख लास पुल चोप शीख राय मेहनत तो बोझ शीख आराम बस यंता स्वी का मोहताज मधुक पा रहा है कामे का लाशा छचिन ता दंग यंबो नस नती अछिनोमोल लद्या इल्तिजाबे कि नाम नची एडमिशन इफ या फॉर्म ची बिंग से यंती जैसे यूली व्हाट्सएप ग्रुप या रेडियो स्टेशन का नहीं तिला यूँस या ची यूँ से यंता छोर न का तो यंते शोक यंबो यूँ से एन एडमिशन बचा देखना रंग सबचा ची यो ना जैसे कालीन ना कालीन सबचा मिंदोक्स टुल चा ना मिंदोक्स टुल चा सबचा दर सबसे राय हुनर पु कामयाब बचा त्याना चोजला यंती सहूलियत तिफिया नाचेस एडमिशन पोंग यंती खरखुल खान दिया सेंटर पुखुरी का चुआ ताकि यंता आर नदीर थागरी साम से नदी कारगिल नाची मेन ऑफिस ला मोमा दखुरी का एडमिशन पु दियाना सेंटरी का यंता बा ताकि यंता यंग दीर कारगिल से यंग जहमत चंग मछा चुपा यंती छन प्लेयत खान सेंटर पुखुरी का दी सहूलियत नाचेस यंता फ्रोत चुपा रद्यांग मायोत किती प्रोग्राम प्याजेर बिस्पेरान यंतां सगा फनके चान शे से दुख दुख दे जुग नांगा जयंती कना इज लेने यजु वसलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात
1: देल जला हवा खातून हैंडलो में कना सी यताला तम चिखाई फ्रोच चुगत
2: अस्सलाम वालेकुम आज हैंडलूम डिपार्टमेंट नजर इंजो रेडियो शानी कना दी कना नोने यों सो खा बोली इंटरव्यू क्वेश्चन लो अच्छे हैंडलूम डिपार्टमेंट ने हर साल ट्रेनिंग तमत एक साल इफ ट्रेनिंग तमत शिक्षा अच्छी तम चार पाँच शिक्षा ने जो दियान खसपा दियानु बाल खा चाहो दियानु शाल थक चाहो दियानु यो जुनु पटेलरी यो सिपनी यो दो नियानु अचार एक एक एक साल ट्रेनिंग तमत ये ट्रेनिंग खो अनु अति टेलरी अनु 15 बोआ तमत ट्रेनिंग ये खसपा शाल अनु 15-16 बोएगा तमत ट्रेनिंग नेटिंग अंदाज बोआ ट्रेनिंग तमत या सिपरी अनु 10-15 बोआ तमत ट्रेनिंग निजो एडवांसिना नॉर्मल चिक नॉर्मल ला लोब से ठीक छाना दोन लंग अच्छा जहाँ एक साल दोन एडवांस ट्रेनिंग से रे दोन ला 700 रुपए स्टिपन एन ला एडवांस नॉर्मल उन ला 500 रुपए स्टिपन तमत अच्छा दोन ला ला से लोब से ठीक सों से मरीज टू मरीज अच्छा को आदिया ट्रेनिंग तमत मरीज शानो अच्छा फिर सांसना सही बस लोब्स का उन ला अच्छा दियाना इंट्रीक सोशिकों का ना लेने चम बशस का उन ला दोन ला सर्पिकर तमत यहाँ न थक पसाए बस दमो बस लोब्स का नुला दोन ला सर्टिफिकेट तमत नेटिंग इन चाय इन स्प्रिंग इन दोन लो से बस लोब्स का नुला खो आचा सर्टिफिकेट छि तमत दे सर्टिफिकेट उन ला उलिंग आयो खो यहाँ इंट्रिक खो आया ने दासन अरसोसी खो भी दोन यहाँ दे सर्टिफिकेट पर खो पंचायन माची सर्टिफिकेट पर अटे सर्टिफिकेट उन चौक जिन यहाँ चौला दो तो सर्टिफिकेट तमन दोन ला आचा सर्टिफिकेट छि तमन दोन ला सर्टिफिकेट पर लोब्स ठीक छा न तमत सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आगे दिलास चांग स्टोर मिल चुके इंशाल्लाह ये दोनों दासा अच्छा तना यूटी से लोग हाचिक सोन दोन लाचा सेंटर सिक्स मन

सामीन आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे लोकगीतों के प्रोग्राम के हवाले से। आज के प्रोग्राम में गुजराती लोकगीत। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 30 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है, उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पचपैदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा वजीर आजम मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संग बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नगढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। यह प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमद और रफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिना रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तिजारत और रोजगार मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्फ किए जाने का निशाना रखा गया है। वेनेजुएला के वजीर खारजा इवान गिल ने मुल्क में तबाहकुन जलजले से मुतासिर होने वाले अफराद की बरवक्त मदद के लिए भारत सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब गिल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत कायम किए गए भारत के फौजी फील्ड अस्पताल का दौरा किया, जहां जलजले से मुतासर अफराद का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में वेनेजुएला के आवाम को रात दिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वेनेजुएला के वजीर खारजा ने बताया कि इस फील्ड अस्पताल में रोजाना 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरू के सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने पर क्यूको फुजीमोरी को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी करीबी दोस्ती को बहुत अहमियत देता है और वसी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी साझेदारी को मजबूत करने के लिए पाबंदे अहद है। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। यह दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मंसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वह इन अफराद की इकतसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। यूएपीए की तरमीम से भारत की इंसदादे दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। इस तरमीम ने मरकजी हुकूमत को इस बात का इख्तियार दिया है कि वो कानून के तहत न सिर्फ तंजीमों बल्कि अफराद को भी दहशतगर्द करार दे सके। इस तरमीम के नफाज के बाद से हुकूमत ने 80 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराए के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो ओटीटी पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराए ने मजीद बताया कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट

आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में सामिन हम आपको सुनवा रहे हैं भरत व्यास के लिखे कुछ फिल्मी नगमे।

भरत व्यास के लिखे नगमों की अगर बात की जाए तो रानी रूपमती फिल्म का एक नगमा था, लौट के आजा मेरे मीत। ये नगमे बड़ा खूबसूरत था और इसने काफी शोहरत न सिर्फ भरत व्यास को दिलाई बल्कि इस नगमे के जरिए फिल्म को भी काफी शोहरत हासिल हुई।

हिंदुस्तानी सिनेमा को खूबसूरत और रूमानी गीत देने वाले नगमा निगार 4 जुलाई 1962 को इंतकाल कर गए और अपने पीछे छोड़ गए वो नगमे कि जो उन्हें हमेशा हमारे जहनों में अमर रखेंगे। उनकी याद हमें हमेशा तरोताज़ा महसूस कराती रहेगी।

सामिन इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज सुनिए मुख्तलिफ गुलकारों के गाए गुजराती लोकगीत।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे मुख्तलिफ गुलकारों के गाए गुजराती लोकगीत। इसके साथ ही आज का लोकगीतों का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ठोकर फिल्म का नगमा। मौसिकार थे श्याम जी घनश्याम जी। और समझ लीजिए, अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में वीर दारा फिल्म का नगमा। नगमा की आवाज जावेद अख्तर, मौसिकार मदन मोहन।

0: कुमार राठौड़ की आवाज में आप सुन रहे थे सालिम सुलेमान की मौसीकी से जय नगमा, फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी से जय नगमा, फिल्म है उपासना।
1: सिखा दूं?
2: सीखना।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था अनु मलिक ने। फिल्म थी मैं हूं ना। और सामने लीजिए, सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, मोहम्मद रफी राशा भोसले की आवाजों में मजरू का लिखा गीत, मौसीकार हैं आडी बर्मन। फिल्म है तीसरी मंजिल।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सुन रहे थे टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नगमा। मौसीकार थे ओपी नैयर। और लीजिए सुनिए किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है वक्त की दीवार। नगमा निगार अनजान। मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

स्वामी ने आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार राहुल बर्मन।

जहां दलदले से मुतासर अफराद का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में वेनेजुएला के अवाम को रात दिन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। पाकिस्तान में रहने वाले ये दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्वस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाज़त देगा कि वो इन अफराद के इक्तसादी असासे को मुंजमद करें, असलहे की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियार हासिल हुए हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2029 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदाम करे। जराये ने मजीद बताया कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदाम की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म्स, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को तहफ़ फ्राहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की समत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियां बढ़ने की उम्मीद है और भारत और इसराइल के दरमियान इकतसादी साझेदारी भी मुस्तहकम होगी। ईरान में साबिक रूहानी पेशवा आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं, जो सरकारी तौर पर अंजाम दी जाएंगी और यह सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। हुक्काम को उम्मीद है कि इन रसूम में लाखों सोगवार शिरकत करेंगे, जिसके लिए सलामती और ट्रैफिक के वसी इंतजाम किए गए हैं। सीनियर ईरानी रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने तेहरान के मसले मुसल्ले आजम पर आयतुल्ला खामनेई को खराज अकीदत पेश किया। इन रसूम में भारत की नुमाइंदगी बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और उमूर खारजा के वजीर ममलकत पवित्र मार्गरेता ने की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मार्गरेता ने कहा कि उन्होंने भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हालिया जंग में हलाक होने वालों के कुनबों से भी ताजियत का इजहार किया। बैन अवी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA का कहना है कि रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से 21वीं मरतबा जापोरिजिया एटमी पावर प्लांट ZNPP की बिजली की सप्लाई मुनकता हुई है। इसकी वजह से एटमी तहफुज के बारे में तश्वीश पैदा हुई है। IAEA का कहना है कि फौजी सरगर्मियों की वजह से बिजली की सप्लाई बंद हुई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में रात भर की कार्रवाई के दौरान 3 नौजवान बलोच अफराद के लापता होने की खबर मिली है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हब्स और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैन अल्कवामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास

लारोस बस जनाब राधा कृष्णा निस वोटर गांगमा दि लस पे अंखक लेंजरे ने भारतीय जमहूरियत पे खिचन स्टेफिला संग संग इंतखाबी छिरपु मन खक छन इंजरंग और सर बसों नाशमाय मरकजी वजारत इस पाकिस्तानी मिंगांग ईश्वर सख्सुन लस्खानी लोकपाल दखिल कानून यू ए पी ए नामजोज योशिक से छिर प्यानुक स्ट्रेसिन गांव योशिक से छपा जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा दुनिया तंजीम नंबो लखथु दियो ते इंजरे से रेन दिगोम्बा नजगी स्ट्रीट ते चलचल एजेंसी चोसो एजेंसी इन सगा दिसपेरे इज इन तांसे खोइन नंखा सगजा बुद बेंचिक लखचा न चला गुन सगा अजगा स्तामे क्यू ता तांसे दिन में दर सख पे पुरगी खबर न आइजिन शजदबस ये छु खुदा न सामानी फकरिया

0: yang lumba ichu zhen yaba bale
1: ichu
0: ichu lumba zhen sa yaba teni yin bing zhen le
1: kasa ta rang tum nyamani bing sa mangpo ra aang
0: kasa
1: ta ka tsu sa rang tum nyamani lumba mangpo aang yang bing cha sa chi chi rikwa
0: ta bing cha sa mani ta rang tum mani sumdo tso sen du bale
1: kasa
0: mani yung jien du kasa
1: ta
0: teni yang kachul kashtor mo la chana nima nyi de lam je kashtor la lep charu kasa ina yin sha pani la aang chana teo ma yin ba benze la aang wani lumba sum yad dano ya le teni lumba sum ka ni za sum cha na le kashtor la bing je
1: अच्छा मतलब केस्टोवर लच्छा लखना लुंपासुम
0: ओ लुंपासुम यतेनो कस बेंजेलांग ने लुंपासुम यतेनो
1: कस
0: त्या लुंबा इनी थोंसुल लुंपासुम यतेनो दोले ने समजीची ने लेतेनो कस आउ तो तोंजे मने लुंबा यंजे ने तेनी दिबे लेपचे ने या निमा जी लम यंजे ने कस कस तेनी आउ योंग वे दे येमांग वे ल खोरना बेंजेले यो वा लुंबे यंजे मने तरान दुरु जे तेके लम बिंग यंजे ने कस एदो मन बा आउ वे दे गंजिंग वे ल गंजे निमा जी लम यंजे ने रुल दे छना दा
1: कस
0: Then Divin ruled the China Nima Jelam and then Divin Nilin Shelly Nima Jelam Charbayale. The old man by the Inia Wakalung the Dionja Wakalung Niang Nima Jigna Petit Chatin.
1: What in Kurland?
0: Wakalung Nina Wakayala Lebanon.
1: That's a young Hennas called Lambing Samega.
0: Hennas going a Kanjin being the other.
1: Kanjito
0: Kanjito Hennas Gumbiano. Kanjito Su Hennas Gumbiano, the Chigal Trekking Jogan Tinian with the Kaji kedran wala lambin dule trekking jure kas.
1: Izan tum la ta trekking jure de yonche kona yon season yoga nam yon na yar hunka to ko khat na ben yon jama. Ton fit nam yon na ko yon yon
0: jama. Da yar skill ba mang jere yon dule. Da yar fit na san san ni yang chu chen mo song ba to ne chu yang zabi khable par do chati dung. Da yar chu zabi shtin san mang kelep kyon du. Kas.
1: कसते रंतुम लें होरियां पकोने पी यं चिरी को ताजे
0: ताजे तब मंबो योग देनो ले तां मंग क्या कितना गुंपाल ताजे तू या
1: कसते
0: देव मैं बस रिया ताजे रिया जासा मंबो ले जासा है कितना यं पेंजले ते ना रिया सुमिजी ले जासा है कसते ते ने नून कुला चासा है ले कसते
1: ते ता जी जासा यो नेना जुरा पता जी जासा जी करु करुं जानो मांचे
0: ललू ना मंग केरन जानो ले
1: कसा
0: मंगे ललो न जानो ते दे नि नुन गुल मंगे र जानो ने कसा
1: ते दरन दुरुन ले
0: दरन दुरुन न जानो ले कसा ते ने मने मंग पो छक न दो ने कसा यार पा मंग बों दो दे
1: कसा या ते ता होरियां पे थोन न दन तुम ला मने एग्जाम गेल र
0: कसा दा मने होरियां पा मंग बो खजी ता दुरुन पते मा छन जिन ने अंगजी दुरुन बाउ मा छन म्यों जिन ने
1: कसा
0: या मुन जिन ने जन दुल छना निमा फे जमसिन ला छ
1: मैंने बाव नंगों
0: बाव ना कैसे तार दें बाव पे ना निमा पे डूल ना बाव थर्सी मैंने कैसे दें बाव गुंडूल ने मैं मिंडा दें मोन जने आले दो यासन जतिया नहीं बोले आधा दें उन रंजन जब यंजने बाव गुंडूल ने
1: दें यू मैंने यंग कोना यंग केपर चंज रहा हूँ
0: कैसे बाव कोना केपर चंज
1: तब मतलब दें बाव ना मैंने लास का जू चार चार मैंने मिसू जा मसों का
0: तासा सब सों मिलू यू मिनू ने दें बाव नंगुले चना ना दा मैंने हलम बंजी चांद ना यंग सोमहर तो सेंच
1: अच्छा
0: ना नंग जी की ना यंग जी जो चाचे यंग जी या तंतो तो से इसे डीडी तो से चाचे यंग जा चाचे यंग नंग जी जी ना बंजो से मंबे ने जो सेंच मिले
1: ते बाव ता इसे खट्टा हो थर्टा लच्छब लान डूल चंच जो बा कि यंग वही द चाचे बा
0: गोमा बु केदर ना ता बाव वो केदर चुंजी जन्दे ले जब वही द चाचा लच्छा बचन ले ते ते नि आवा केदर मने लान दे ना जो ते जो बंजो ले चंदी जन ते मैं खजी के ने ते ना लुस मिनु कैसा मैंने तादेव मैं गया लेन मैं हमले पर तो मंबो चलूले ना तामान छांबे जो से यों दे ना दाल ताना चाना तंसा में बाम हमु चलूले कैसा यों आयों ने तार्शी में पा कैसा
1: कैसा या याले जो तशी दर्जे ते निरंग का ह्योते ते रंग तो मिहिदु तं ताचं मिंगुरजा तं ता जुना चीरी बिन योते न्याना होरियां थोला चीसा कं थोले न्याना यंतन दं ता कम्दे दं ते चंगमे होला न्याना जीब जीब साल साल दिन जुए दे जुई ते न्याना तेरी का ह्योचे बन्यिंग तापने तुझे चेंजुले
0: कैसे चेंजुले तुझे चेंजुले
1: या चेंजुले
0: या
1: चेंज दक्षिण जीजा कुनी ट्रेसी दौड़ जेन्यंपो रंग दुमी ना स्किडो कुनी स्कोला इटिवा चिलेन बसन संगल लंगेस तेने यू इन बन गजे जांस्कारे दुन्जा गन डिग्रिंबो ने रेवाचुन निजागुने इन डिग्रिंबो पंतोस चंजिक सो संते योडो तिंग मायों चक्षने जल्दावेत सने चुचोत गुदां पेरेका यंग डिग्रिंसो माजे कुर्ते जलन ते ते चुप्पा कोंस्पा सालचा जुले सन्मोदेलेगा

0: Derentes zanskari programpala yanin chetpin. Programatsir tangan penmin Stanzin Otser, yang di programi producer penmin Gulzar Hussein. Mide mayu don FM channel ikan kacas Akashwani Kargil na zirin chiyo duak spadari tu sotruk chenduk kasta Akashwani Dehli na Anglezi na Hindi khabarun rilebet rilelente danji basat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगल में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
3: हमने संकट शुरू होते ही

0: और मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया।

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार

0: Moving on to sports, in men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 p.m. India time. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. The third match will be played in Nottingham on the 7th of July. And that is the end of this news bulletin.
1: Midimeu Don FM Channel Kadu Akashwani Kargilin.
2: नई वॉशिंग मशीन
3: अच्छा
4: यस क्या हुआ
2: अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है बस क्यूआर कोड स्कैन करना है
3: अच्छी धुलाई होगी
2: है ना
3: बैंक अकाउंट की पैसे लेते वक्त क्यूआर कोड स्कैन पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं होती उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए
2: बच गए धुलाई से
3: ये नई धुलाई आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए चौकन्ने रहिए
3: फूल वाला केटिंग वाला बैंड वाला ये लो भाई
6: बैंड बजेगी पापा अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे
3: अरे नहीं भाई बैंक संभाल लेगा
6: कैसे
3: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी बैंक जांच करेगा तस्दीक करेगा तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं
6: अच्छा लाइए मुझे दीजिए फोटो वाला लाइट वाला मंडप वाला
3: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए चौकन्ने रहिए
3: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये
7: Jangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapile pis caps mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
8: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
9: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
8: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
9: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
8: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
9: 8700014242 सुनो ना
8: हाँ
9: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ
8: तो रोका किसने है हाँ
9: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं
8: मुझसे
9: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर
8: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है
9: पर उससे मेरा क्या फायदा
8: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ
9: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं
8: बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 8700014242
9: ओ 8700014242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर
10: ایلومس بنینوہ انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام

मीडियम दोन एफ एम चंद्रिका दियो आकाशवाणी करगिलिन कस्ता प्रोग्राम एंते सियन मजद गांधी कसल प्रोग्राम अच्छी तंकन पुन सज्जाद अली शुजात

0: जरना तंग अथी सभी का 18 साल से बिलो एज पो यहाँ चीज जर्चिन आते माइनर जर्चिन 18 साल से योगा गाड़ी का तो स्टूल ना यारे गाड़ी स्टूल का तो स्टूल का तो स्टूल ना अगर गा सूची की विदाउट लिसन ना चाहे खोरा यारंग 18 साल से एबो इन चाहे नीचे जुर्म ही ना गाड़ी यारंग ड्राइविंग लिसन मत पा लेकिन चीची माइनर ना बालिग मान मैन मैं खुश गाड़ी स्टूल ना 18 साल से बिलो गाड़ी का तो स्टूल ना दे जुर्म पो खोइन विद को ज्यादातर दे पनिशमेंट पो को पेरेंट्स गार्जियंस या खो जो गा जगह गार्जियंस ना थी पेरेंट्स करे सजा पनिशमेंट पो थोप चिंजो दे हम पनिशमेंट माना मामू इधर हम पनिशमेंट यंग दे सोखला को गार्जियंस का 3 महीने सजा या 15,000 रुपये खोई का 50,000 से ऊपर या 15,000 से ऊपर कोई का फाइन हो चेन दिन यारा डिपेंड पोचेन यारेस और दे फ्रूज गाड़ी स्टूल से गाचुक फाइन पोते का डिपेंड बचेन यारेस गाड़ी स्टूल है ना और दे गाड़ी स्टूल है केस दे माइनर पोस्ट और दे का ना मिसाल माल सा जा एक्सीडेंट जी का तो छाना एक्सीडेंट पो गाचुक हादिसा गाचुक चीजों से और दे सब यारा फाइन पोचेन लेकिन ये फाइन पोस्ट ज्यादातर यारा आती जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट कुरी बहुत से यारा आते हैं ऑर्डर से कि पेरेंट्स जेल लग कर ले जो क्योंकि फ्रूंग आती है सभी का 18 साल से बिलो छो ना कोई मन चंग मामिक दे कसूर जी शामस होंदे कोगार कालचिन है जुवेनाइल जस्टिस यरान जुवेनाइल देने देने कोर्ट यंग कालचिन लेकिन ज्यादातर दी पनिशमेंट पोगांगमा यरा पेरेंट्स ना गार्जियन से का फुक्चिन जो बख्शिस
1: बख्शिस जो दुरियस मन तन तन मोल से छने जो दिरे यंस प्रैक्टिस से ले मोबाइल फोन इसको
0: दोनों दिन बड़ा चीक नाता ओनर साइन मिसाल के तौर पर नाता ज्यादातर नती गाड़ी शुल्खान नवा वैसे गाज सूची गाड़ी शुले ओनर जो से मिसाल क्यों ना कोई मैं सबसे पहला एश पोतार गोशिन दियनु गाज सूची की ओनर सी गाड़ी ड्राइवर क्यों ना का तो हो सकता है खुद सस्ता रिक्त हो बना डिग पत पो डिस्टिन मतन बाजार ले चीज है चीन जरे 18 साल से का तो नीचे का तो योजना कोई एश पो बिलो का तो योजना ओदे गार्जियन पो ना पेरेंट्स पो ना चोक्स ना चोक्स ओदे ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोई कंदे सजाओ बराबर यों चेन बख्शिस
1: देख लखो पहले स्क्रूटिनी बा
0: बख्शिस बख्शिस बख्शिस एश पो मिसाल के तौर पर आती मार्केट है यो देखी का चीज गाड़ी घटुक चीख होत ड्राइवर घोषत मिसाल के तौर पर सुनसे रही होत पाना को सांडिक पर जुंगा इनसेक तानाडिक पर मिसाल 10,000 लेके 7,000 तानाडिक बन ओदे 3,000 बचे बचे वे चक्कर यानो को ची बचिन जर बना दे 3,000 बचे जे चक्कर यानो को चा एश पा मालता को मेन गाड़ी मिसाल ड्राइविंग लिसन तो को इशू शाचा में क्योंकि 18 साल से बिलो में ड्राइविंग इशू में उदुन गामा गामा यान दे गार्जियन ना चोकला पेरेंट्स ना चोकला ओनर फोन रिस्पांसिबिलिटी इन बस
1: बस जो छना जो मज दरु तिनत पिन में किसना लेस जो सा मोबाइल फोन को लेन जे हजुंगा ता गाड़ी शुलचना छना दे मोबाइल फोन कलते सुका सजो माता गाड़ी शुलचना यूज बाथो न का तो या देखस पर तानिया चितो रिक बिन चितो न का तो दे फला दे कानून न चा यो ता मैसेज
0: देश दिन कुरियन यरा कानून पेनुक गा सुचिगिस मोबाइल फोन यूज का तो बना गा सुचिगिस गाड़ी स्टूल भी दौरान यानो मोबाइल फोन यूज का तो बना कौन अंग पनिशमेंट है जो कोई कंग सजा है जो दिया कानून पे अंदर यंग कुआ 2,000 से ऊपर या 10,000 से ऊपर कोई का फाइन फोकचेन या दूसरों से नाता दी एक पे अंदर यानो दू खुरंग गाड़ी स्टूल इंची मोबाइल यूज बचाओ खुरंग यंग जुर्म इंजो ऑफेंस इन ट्रैफिक के वायलेशन इन बख्शिस
1: स्पीड पुंगातस कंट्रोल बसे शुल चेजरे यारे सांगमोल संकी नाता गा जगह चिका चामशी का शुल बगोश जिंदो नाता तस्पा उमागोश रहजो चने जो दक्षम नाती ड्राइवर उन्नीस जुनगा तो कौनस था जो खुरी ना कंट्रोल लगा था जो चना जरूरी में कि हमेशा गलती यारी दुख दुख चना दुन भी गने गाड़ी के उन्हों नगा तो स्पीड आओ नगा तो दें गलती चना दे वजह का एवं आजू छा जैसे तहाँ जो चना उधर निस्कोला ओवर स्पीडिंग पे का चंग आजू शियो तमे दे
0: बाकी जो यारां दियो ओवर स्पीडिंग आता आज़र नगा तो ओवर स्पीडिंग सेक्शन 183 द मोटर व्हीकल एक्ट पुखरी आता से जो यारां छोटा सुनसे गाड़ी ना शो गाड़ी यारां हेवी गाड़ी ना आता आज़र ना लाइट मोटर व्हीकल एक्ट गाड़ी नुकसान से क्यों चिंजर बना दू खुरी स्पीडिंग खुरी का डिपेंड इन जो यार रोड पर का चुक चुत मिसाल के तौर पर हवाई का यार 10-20-30 स्टूल जरे ना योत में मिसाल मा स्टूल हम मैं दे यार हंगस नंगस दे ओवर स्पीडिंग दू चोक शुजु आती माहौल पर दू चोक शुत की उस जल्दी बेच जरे ना यार दे बाजार या ना संग मी डू लेने चियो दे 80 चाय दे स्पीड एन खेरे दू जुरुमिन यारा ओवर स्पीडिंग खुरान जुर्मिन लेकिन ओवर स्पीडिंग से मैं लिमिट चुत मिसाल के तौर हेवी गाड़ी चीज ओवर स्पीडिंग का तो बना खुए का अलग फाइन होत खुए का अलग पनिशमेंट होत या लाइट मोटर व्हीकल ची का अगर यारिस ओवर स्पीडिंग होना खुखरी हो यार चीची यार आजी का जरना सेक्शन 183 यारिस ओवर स्पीडिंग बेन गाड़ी सुनसे गाड़ी का तो इन ना का तो यार 1,000 से ऊपर 2,000 तक यार आदि का फाइन हो चाहिए या यारिस हेवी

0: गाड़ी या गुड्स मिसाल गाते सामान की गाड़ी इन नगा तो खोई का 2000 से ऊपर 5000 4000 तक खोई का फाइन है। ओवर स्पीडिंग लिमिट पे यार नजर ना गाता तो गंगा डिपेंड ही नेरी रोड पे का मिसाल के तो पर 80 से ऊपर ना यार हवे का सुल चाहे चमन लेकिन गाती ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट पे गंगा तकसम हवे का गाता नजर ना नम गाता हादसा साथ छोड़ ना गातो चीज पे जो गाड़ी स्पीड है पे जो ये कानून नस ना जरे कानून ओवर स्पीडिंग पे मीची मिडुल मिसाल गाता जल्दी से जरूरत हो जो ना मत इमरजेंसी सुन इमरजेंसी सुन स्पीड है छत कानून चो से तो नहीं ना मन जरूरत है बार गोशत ना दी स्पीडिंग पो छोड़ो ना मन वायलेशन का तो बेजर ने तो चोचा को ना नाती सेफ्टी में ना चोसिन यारा खंगमा मिसाल इमरजेंसी सो से यार ओवर स्पीडिंग जी बस हो सकता है हादसे पे जो ना यारा यारी मन मकसद पे का मतलब थे बात नुकसान है उदुन गंगमा नाती सिटीजंस ऑफ इंडिया ताफुजी मीना सेफ्टी मीना दी ओवर स्पीडिंग जरिए कानून गंगमा गज कानून चीचो सी कानून पोखरा यार मोटर व्हीकल एक्ट पोखरा पो नाती एक्सीडेंट पो रिड्यूस बेमीना नाती हादिसात उन कम बेमीना दी कानून पो चोसिन जो ताकि कम से कम सजग जक बना मीन दो लजिक से कम कॉलेज रेस्टूले ट्रैफिक रूल्स पो ओबे का तो बना हो सकता है यही वजह गंगा जरे जांच पर चीजिक मना तन तन जिसकी ngatanga maximum lechi chat zarbana ngazi gna gadi sulu kole chenyo aga nyang gadi yong kumana speed gat nila ama chan luz maluz de odu gang ma khayal ja pa shin mesar donung side na aga nyang ngadi gna misal ke to bra hawe karu 50 ya 60 dule 50 60 speed chenyo aga na ri 100 se upar speed ga to na ni control chang met उदुन गंगमा चिन गंगमा वायलेशन सिन दे ट्रैफिक वायलेशन सिन दो चीज है जिनसे में येरी हुआ जगह दी कने छाखानी गाड़ी संग नुकसान है उसको हो सकता है खो इंजर्ड छचिन खो डेट आ छचा जिन उदिन डेट का तो छाना आता है यार नजर ना आता बीएनएस से अंदर या छचेन जो मसा जी का गाड़ी खटू लेना चीचिक डेट सो यार इस पैसेंजर जो खुरी हो पिन या मिसाल यार पैसेंजर गाड़ी यार इस गाड़ी मास्टुलेशन यार ओवर स्पीडिंग होत या यारी गाड़ी उंगस ना जैसे मेंटेनेंस चेंज अकबर क्वेश्चन मेंटेन नते मिसाल के तौर पर खे नता जर ना का तो गाड़ी जो जो नता पार्ट उन जरूरी जरूर जो पार्ट होता ओदन हम मेंटेन का तो जक ना एक्सीडेंट नी माना देन यू चांस कम इन जो है मिसाल गाड़ी मान मास्टुलेशन ना खे चांग नता चीज गमी मंगाता गेरी पता में या नता खे ब्रेक ही पता में ब्रेक माना हो सकता है यार इस गाड़ी जग बेन मेंटेन का तो जग ना यार मैक्सिमम गारा थों खान पु गाता दु नुकसान चचिन गाड़ी ब्रेक फेल सों सुजरे गारा कोटे यत पनेरा रिपोर्ट पेन भी सो मजु ज्यादातर रिपोर्ट पेन भी सो मत कोई केयरलेस ही वजह केयर मबा या नेग्लिजेंस ही वजह का या को स्पीडिंग वजह का सों सुजरे यंग यंग चीज चीज रिपोर्ट पे चिन जो की कोई ब्रेक फेल सों सुजरे मैक्सिमम ब्रेक फेल चे सचिन जो यार जेरी गाड़ी मेंटेन मजा पना उदिन गामा जुरमिन यरा आज जरना का ओवर स्पीडिंग पु खरंग मन आते स्टुलजा खरंग कानूनन जुरमिन लेकिन ओवर स्पीडिंग जर बना नति रोड की कंडीशन से हिसाब का स्टुल बगोशेन यार इस मिसाल के तौर पर गली अनु कंडीशन इन जर न मन स्पीड शुल जमीन जर हवे का मशुल दो मेन लिमिट चो चिन का जगह चे ओदे लिमिट है सभी का कानून इस गचुक चीज जर ना दे सभी का डुल बर गोशिन जो
1: बख्शे जो छना दसम मते सजो मते करगिल कॉन्टेक्स अनु स्पेरा ता नगा तो मता पतो नति मार्केट पु गजुक शे जो मस्को तज मते पेडेस्ट्रियन ना मिमा सु ना दने का डुल बा मते गाड़ी यंग दना फे डुल बना हजु छना दिरिया नु मते लामी का डुल खान नु ना गाड़ी शुल खान निस्के हजु चिक चिक पे तई अजुक शी रिस्पांसिबिलिटी दु पहाजु लामी का डुल लेने खान पुसंस ना बा गोशा दो की दी का गाड़ी का शुल लेने खों बेरेट नक्श मिचा गोद ला मुश्किल जंगा मिडुल बा गोजरे छना ओदो चगा यरेस ची समय जो मतंग मीमांस सगे का हजु मन बीइंग अ ह्यूमन गते सिविक सेंस मते स्कोले गति का गचुक रिस्पांसिबिलिटी रिदुक इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी कि नि कना चंग गलती मिचा गोज नि वजे खला यंग चे नक्श मे थोंगा गोज दे दो सोसला गचंग अते दे
0: मना गातांग रेरे ने रेरे एक्सपीरियंस का तो योन वाकन दी एक्सीडेंट कम छछिन नाती बाजार पुस्सा का पता तंग देनुक चांग पब्लिक आंदे पर जुलचिन गाड़ी आंदे पर जुलचिन गाता गारेस मिसाल गाता सग गाड़ी स्टूल बत नाती मिसाल की तो पर दे मैक्सिमम नाती पब्लिक ई दी चुक्षियो कंजम पुकी ड्राइवर से रिस्पांसिबिलिटी खस को ले खमर गोशिन असंग गाड़ी बाजार एन छिन ना गाड़ी सुलचांग नी राइट सिन दे कसा ना गाड़ी स्टूल छिन यरंगा यरस बाजार ही रोड पो सिटीजंस ऑफ इंडिया डुलखानी मीना रोड चो सीन में दे यरंग कम से कम गाड़ी उनखानी रोड पे मिडुल बरगोज है थमा पे डुल बरगोज यरा चीज है ना सुन खुरा चाहे दिस पर मन यरंग अमन इंपोर्टेंस है बाजार ला यरा दे मी दे गाड़ी मेन मा ड्राइवर पे बगैर गाड़ी मैं गाड़ी ड्राइवर बगैर यरा दे

ग्रीन फील्ड रिफाइनरी ने पेट्रोकेमिकल सक्स गेस्ट्री लर्ता पसों गांव गेस्ट्री थी खुद ने पेट्रोकेमिकल लिफियो फेनुक लेगी ना लास्ट ऑप्शन आ वक्त से इल्ता नहीं तो लाइन हो चाहिए जरे और सर सेट लद्दाख से सांसद नामजार और चोलुक स्थान में लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना एक्स सर्विसमैन और किया लद्दाख एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स पे अनुक और तांसिन दे फोर्स पे रिटायर्ड छकन नर्स मखमून पैरामिलिट्री फोर्स ने लद्दाख से का उतन रसी होते इंद्र ने लद्दाख गांव पे अनुक नमजे स्टोन लुक्स पुर तन पुर शेमीना लमिल जों सागर जक्स खन चला उन थेंचा इज इन में पतांस खन जंगल बियल सों सों नजरन चन नमजे लोपार निकल तलु जक्स गास उच इज नमजा ने बो हंस पर से ने खन लोपार ल देना वक्त चला अंत में खुद पा तांस एक होते इन फोर्स पर थरस पर फुद तांच लेफ्टिनेंट गवर्नर दिगंबाज बसे नमजे स्टोन लुक्स पुर तन पुर छचा सिंजरन फोर्स पे मेंबर ल दिला सुनिमीना खगे इन्ना मुस्कल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ड्रिंग प्रोजेक्ट मुहिम हिम सरोवर पे नालचों और चौखा तांखन मथेर जिंग पुला गुजुबस गाज बसे सखेत ला छोबस छुन तब चाहे तीन सर जैसे इरिगेशन मकम में छोस ना मरियान खोसखन दी प्रोजेक्ट पर और जिंग पेनो छुच किल बेथिक पुला दासन स्केत खों से लीटर मिलियन चोगे कना स्केत लीटर मिलियन ईश्वर सागर जो सिंजर है सर बसों तस्वे मीनजर ने दर्जिंग को सख्यात एकड फेनंग निबिया छुक छुता मीना रोचा चा इंजर मथो गमिल जंजोस और गुपचू अफन खेचा चा इंजर सर बसों चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख आशीष कुंद्रा सीटी लद्दाख से अनुक लोकसो मरकजी सिक्किम मलेंख्यो ममीन तालुक से ग्राफ सिग मलेंख्यो दिवस ला ग्राफ में शेष लक्ष्य से एरियास के दुर्दलुस गमिल एरिया सरहियास हाउसिंग दोनों डिजिटल कनेक्टिविटी विल तालुक से बसिन देवरन चीफ सेक्रेटरीज महकमन गामा प्रोजेक्ट इन सफख से नाजोंस घाट के बसे थमा थन चुगजन वक्स वक्स का रिपोर्ट पहुंच तो जरे खास को अंतांस को जाम पीएम श्री सुकूल पीएम कुशल विकास योजना पीएम सूर्या अगर मुफ्त बिजली योजना भारत नियत फेस सेकंड आयुष्मान भारत जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन दिन फ्लैगशिप प्रोग्राम उन सवांग अस्ता लुक्स बसेन बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कारगिल सर दिलुक्स महकमा कारगिल लाथोतिका मलियन खंसखन जखमा शिपा पुक्समो शेषनी हैली दोनों लोकसो ऑपरेशन उनसक मलिंखों में मिने गल सिर बस खन केम्पो गंदा शाम ना डॉक्टर उन और देलुक सिलास्मिन दोनों रजाकारों ना रोजाने गल सिर नहीं हम बहुत हम आधान तस्वीर में नजर ने देखें पु जून इल्जे सुम ची के ना जुलाई इल्जे सुम सुपा कम्बर अली आखों मेमोरियल अस्पताल कर की लव मलिंखों गवेनो गुरुग्राम में वेदांता द मेडिस्टिक हस्पताल इन सपाओ मलदुक सिर देलुक सिलास्मिन सगस खगलने दिर देलुक से इलाज उन सगलख चेप्स नहीं हम बहुत मलिंखों से थमाथोनिन देवरियन तकरीब नगरान बाकरी सदर डॉक्टर अहमद अली जिक्सखोर इर दलुक से टीम पूर दलुक से महकमा इरदल्ला इंतजामिया रजाकार दुन दी केम्पुल लखथुत बस खन रेरे न रेरे लखसेब नंबो थमाथन चुकुमीना लखथुत पेका ओ जूजेस को जा यो मे बक्स ने अनुगा दना चोस केम सक ग्रल सिर बेमीना फ्रलुक सुन बे जरे अर्तियांग मांग अबसेन जिला पुलिस द्रास इज मीना मरगना करगिल इर गेलम पेका अस्की अस हाथों के बजा त्रु की कहना बजा अर्चू सुपा शोरिया थान पुन नजम से गाड़ियों ने छायों पुलिस गस अल्लू शाइन जरे इस सर बसों दिस गसुन चौकिया ना उल्बियारा अस बात्रा के नईम और मलेंख्यों से गाड़ियों ने छायों पुलिस गस ताचा मेरा थान पुस हिंखम नेम्बो मलेंख्यों चावना लखक लिनखन उन्हें स्ट्रोन लुक्स पुस तन पुस चाव इन जरे ऐसे रेन दियो नजम से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर उन आम मिमासन रंग रंग बेसान वक्त से हिसाब का गुजुक बजरे जिला पुलिस ने जिला इंतजामिया दिस गस वक्त लखथुत बजरे युवांग बस पुरगी खबरों लेंते आकाशवाणी करगी लेकिन असना बेंच नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णा ने दिन इंतखाबी सिर्फ हिस्पाल तलुक से लस नालसों फारम उसका सैन सोशल मीडिया पोस्ट का नायब सदर जमहूरिया दिल्ली चीफ इंतखाबी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दोनों बूथ लेवल ऑफिसर उन सगस दिल्ली अमल यानो क्यों उसका इंतखाबी सिर एस आई आर पे पोचेगी जोस्ते का उपराष्ट्रपति भवन ला मीचुक पिल्ला सुन ला और रुख सो बस इन जनाब राधा कृष्णा ने वोटर गंगमा की दी लसंगन पे की दी लस पियंग खक लंजरन ने भारतीय जमहूरियत पु खुचन स्टे फिला संग संग इंतखाबी छिर पु मना जुमेद ला लखचे फशन लु शाइन जरे अजर बसों नाशमाय मरकजी वजारत इस पाकिस्तान मिंगा इशुर चकसुम लसनानी लोकपाल लस गखिल कानून यूएपीए नालजोंस युलचिक से छिर पियानो को स्ट्रेसिन गांव युलचिक से छपा जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा दुनिया तंजीम नेमो लखतु दियोते इंजरे अजर बसंत गुंबाज यस्त्री ती चलचल एजेंसी चोस एजेंसी सगा देश परे इज इन तास को इन नंखा सगजा बुद बेंचिक लक्षण न चला उन सगा अजगस्तान में क्यों तो उत्तान सेन
بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن پلس کے تام ممین وزیر اعظم نریندر مودی درین گجراتی سنسد پہ ملسے کا سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی نے ٹیسٹ مرکز پلک گھسک بس گونش ملک کروڑ فینگ اور گیا تیرینی کا

0: rangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thokain akashwani stanchain customer un sapilepis cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो

0: करें 8700001-4242 पर
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। 18,000 से जायद यात्रियों ने किए आज पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत से जुड़े मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के माबेन बेहतर तालमेल पर दिया जोर। और मरकजी सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने का किया फैसला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी का किया शुक्रिया अदा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बल्होत्रा राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्कियाती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और कई एक का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक

0: अलाउ किया जाता है। जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे EKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। जो जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं उन्हें कुछ दिन वेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है।
1: अदालत उजमा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के एहसन इनाकात के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तीफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का एक वक्त इसके सदर जीएम शाहीन की क्यादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ और जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को फरोग देने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। वफद ने कई दीगर मामलात भी LG की नोट्स में लाए। दरियासना ओमपोरा बडगाम के एक निजी तालीमी इदारे का एक वफद स्कूल के प्रिंसिपल शाहनवाज शिफी की क्यादत में LG से मुलाकात हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को बिलाखलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब होगी, नीज मुसाफिरों और सयाहों को राहत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लोगों, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को तहफ्फुज़ देने के लिए यह मामला जाती तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाया था। वजीर आला ने इस जमन में मरकजी वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि सियाहत के इस सीजन में हवाई राबिते को बरकरार रखना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। कई अरकानी असम्बली ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और लोगों के मसाइल उनकी नोट्स में लाए। मुलाकात करने वालों में MLA बनी डॉ रमेश्वर सिंह और MLA बानीहाल सजाद शाहीन शामिल थे। वजीर आला ने अरकान के मसाइल गौर से सुने और यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज नंदी मर्ग कुलगाम में एक आवामी दरबार के दौरान लोगों की तरक्याती जरूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलों को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में वजीर मौसूफा ने इलाके में 3.5 करोड़ रूपये लागत वाले एक सड़क प्रोजेक्ट का भी संगी बुनियाद रखा और इलाके के लिए मुतद्दिद नए तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शूरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहा की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतादिद सरगर्मियों में मुलवस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। यह कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इक्तसादी असासे को मुंजमद करे, असलहा की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें भी जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदादी दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मुनक्कद किया जाएगा। यह जानकारी पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन

0: और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंदा को उनकी बरसी पर खराज पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने उन्हें एक अजीम वतन परस्त फलसफी और रूहानी तौर पर दूर अंदेश शख्सियत करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंदा की रूहानी तालीमात विकसित भारत के विजन को हासिल करने में नई तवानाई के साथ मुल्क की रहनुमाई करती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के एक अजीम दानिश्वर और कौम परस्त स्वामी विवेकानंदा जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि स्वामी जी की तालीमात आपसी भाईचारे, अखवत और इंसानियत की बेलोस खिदमत करने जैसे अकदार को तकवियत बख्शते हैं और आजकल के दौर में भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई सतह का एक खसूसी इजलास आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में तंजीमी उमूर, पार्टी सरगर्मियों, लोगों को दरपेश मसाइल और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करेगी। देरी असना उन्होंने आज खानियार श्रीनगर में हालिया आग से मुतासरीन में 14,20,000 रूपये की इमदादी रकम तकसीम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने सिख बरादरी को गुरु हरगोबिंद महाराज की 431वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार, भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी के अकदार को तकवियत बख्शने में अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग के दौरान 6 और 7 जुलाई को बीजेपी कौमी सदर नितिन नाबिन के जम्मू दौरे के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कौमी सदर के दौरे को कामयाब बनाने के लिए तनदेही के साथ काम करें। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नामी किताब को तमाम सरकारी लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों से वापस लेने और इस पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्फीन की शिकायत के बेहतर अजाले और उन्हें इंसाफ फराहम करने में डिजिटल असलाहत के जरिए मरकजी सरकार की जानिब से की जा रही कोशिशों को उजागर किया है। आज इमदादी बाहमी का बैन अल-अक़वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्ण और तावन के वजीर अमित शाह ने इस मौके पर आवाम के तई नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीपी राधाकृष्ण ने कहा है कि इमदादी बाहमी भारत में किसानों, खवातीन और छोटे दर्जे के कारखानों को कुवत बख्शने की मुहरिक रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि इमदादी बाहमी भारत की सकाफत, मजमू कुवत और खुद इंसारी की बुनियाद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तीनों ममालिक की आला क्यादत से बाहमी दिलचस्पी के कई मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मकसद आपसी रिश्तों में मजीद इस्तेकाम लाना है। हजरत सैयदना इमाम जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स की मुनासिबत से आज मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में खसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें उलमा ने इमाम जैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी कमालात और इस्लामी खदमात पर रोशनी डाली। आसारी शरीफ, डांगरपोरा, नरवारा, श्रीनगर में हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, जबकि जम्मू सूबे में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:25 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: समईन आदाब। आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मा। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुहज़्ज़िब और जिम्मेदार मुआशरे की अव्वलीन तरजीह होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कवानीन और रहनुमा उसूल वज़ा किए गए हैं, ताकि उन्हें हर उस अमल से महफूज रखा जा सके जो उनकी शख्सियत, विकार या मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब कर सकता हो। इस तनाजुर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की जानिब से मीडिया नुमाइंदों, डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स और आम शहरियों के लिए जारी किया गया हिदायतनामा एक बरवक्त और दानिशमंदाना इकदाम है। ہے۔ موجودہ دور میں معلومات کی ترسیل کی سہولت کے ساتھ کئی نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ ایک موبائل فون رکھنے والا شخص تصاویر اور ویڈیوز کو لمحوں میں لاکھوں افراد تک پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ آزادی اظہار اور معلومات کی فراہمی کا

जय हिंद दोस्तों, फौजी भाइयों के प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारे ओर से खुलूस भरा आदाब, और आज की इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आप चंद मुंतखब फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

अभी प्रोग्राम के आगाज़ में आपने शब्बीर कुमार के साथ कविता कृष्णा मूर्ति को सुना। फिल्म थी शोला और शबनम। ये नगमा लिखा था अनजान ने और मौसीकी तरतीब दी थी बप्पी लहरी ने। दोस्तों प्रोग्राम की अगली नज़र वारिस फिल्म से नगमा। मिली जुली आवाज़ें हैं मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की। ये नगमा लिखा है वर्मा मलिक ने और मौसीकी दी है उत्तम जगदेश ने।

दोस्तों, यह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ढाल फिल्म से नगमा, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। यह नगमा कलमबंद किया है कातिल शिपाही ने और मौसीकी तरतीब दी है अन्नू मलिक ने।

0: अच्छा है?
1: Yes. क्या हुआ?
2: अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है।
0: अच्छी धुलाई होगी,
2: है ना?
0: बैंक अकाउंट की। पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती, उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए।
2: बच गए धुलाई से।
0: ये नई धुलाई। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
0: कब तक लंबी कतारों में उम्र गुजारिएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, ये देखिए, चुटकी में पेमेंट कीजिए। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कहीं भी, कभी भी, और महफूज भी। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: और उनको भी सिखाओ।
0: अरे
6: अरे अरे, तवज्जो हटी तो जेब कटी।
0: ना, मेरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड।
7: तो
0: डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी।
7: पर पैसे तो गए।
0: नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, वक्त से जो की शिकायत, मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। RBI कहता है कि
3: जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।

0: फौजी भाई अपना मनपसंद प्रोग्राम इस वक्त आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों आपके प्रोग्राम रोजाना शिफ्ट ठीक 8 बजे आकाशवाणी करगिल से नशर होता है, सुनना न भूलिएगा।
1: नई वॉशिंग मशीन।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को सुना, फिल्म थी सिलसिला प्यार का। ये नगमा लिखा था समीर ने और मौसीकी दी थी जतिन ललित ने। फौजी भाइयों प्रोग्राम की अगली पेशकश लीजिए, समाप्त करें दीवाना फिल्म से। ये नगमा गायक कलाकार है कुमार सानू।

दोस्तों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए काला बाजार फिल्म से नगमा, गायक कलाकार है मोहम्मद रफी। ये नगमा लिखा है शैलेंद्र ने और तरस दी है एसडी बर्मन ने।

0: फौजी भाइयों, प्रोग्राम की आखिरी नजर लीजिए, समाप्त करें अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा। फिल्म का नाम है सिलसिला। ये नगमा लिखा है जावेद अख्तर ने और मौसीकी तरतीब दी है शिव हरी ने।
1: तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं।

कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। हम आकाशवाणी करगिल साहब से मुखातिब हैं। सामईन, अभी खबरों का वक्त हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू खबरनामा रिले करेंगे। रिले का भी इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।

0: और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।

0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा 20

0: 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा

0: भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद ने CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defense exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defense Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for host England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे हम। डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया।

0: मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं. आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा. मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है.
3: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड. द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28 फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31 मार्च एंड टुडे ऑन 4 जुलाई द थर्ड प्लांट. गिवन द स्पीड विद विच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोज 12 प्लांट्स, अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज हैज इमर्ज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे.
2: आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है.
1: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
0: Bharat

0: areas of Pune and Satara for the next 2 days, while an orange alert remains in force for the ghat areas of Raigarh, Ratnagiri and Nashik. The India Meteorological Department has also issued a yellow alert in all the 14 districts of Kerala for today. The yellow alert will continue in 3 districts tomorrow. An orange alert has been issued for Kannur and Kasaragod districts on Monday and for Kannur, Kasaragod and Kozhikode on the 7th of this month. Heavy rainfall is expected to continue until the 8th of this month. Due to adverse weather conditions and rough seas, fishermen have been advised not to venture into the sea along the Keralam, Lakshadweep and Karnataka coasts. In sports, in men's cricket, India has set a target of 191 for England in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. In reply, England was 16 for 2 in 2.2 overs when reports last came in. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Ishan Kishan scored 49 off 40 balls, while Abhishek Sharma contributed 43 runs off 24 balls. Earlier, Vaibhav Suryavanshi created history by becoming the youngest player to make his international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility in Sanand, Gujarat, to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूने मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मजकूरा प्लांट में मुतन

0: नहीं है, ये टेक्नोलॉजी भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
1: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनअती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीयत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनअती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।

जनाब मोदी ने कहा कि बुहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत

0: मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैनुफैक्चर

0: मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे टी20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अल-अक़वामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मुअसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Миремеу Дона ФМ Чанали Камачаза Акаш Вани Каргилна Зеленчут Уақс Бадари Цан Тусо Тургун Афетсон Сукаста Прокаменты Сиян Мазат Ни Файур Прокамент Сиртам Канпейн Мухаммад Хасан Аскари

0: ना शुक्रिया मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम
1: ट्विन मिन ताचा दोनात कुक्सते मिमांग सुने कना ख्योंस पी त्रिस्वे ध्यान यंबो नी फाइल प्रोग्रामी वक्स पहुंच हम्स योंग मी प्रोग्राम पुछक पांगा चा इजाजत शेज़बस यजु खुदाई फ़ग्रिया।